0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
3: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

Leica. काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर।

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान।

0: Delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल्ड 2। Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app. Your wake-up call. This is Kajal on Breakfast. Leica Radio.

0: This is Leica Radio.
1: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर

0: Fajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your 773-633 to book your dream holiday.
1: Like a radio.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
4: One performer.
5: दिल्ली के सामने का प्रोसेस कहने का पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
6: Countless personalities.
7: जिंदगी बर्बाद हो गया.
4: A whole universe of entertainment.
8: नन्ना फंक्शन रखा हुआ है.
9: Sunil Grover live UK tour 2026.
4: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
9: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
9: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
10: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand. Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples. Phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana aur amazing excursions. Sab included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
11: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
12: It's back and it's bigger.
4: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
12: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
4: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
12: Exclusive charity

0: Talker Radio.
1: Get ready, UK. Sunil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए, हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट महाराजा टूर्स.co.uk और कॉल 07956

0: good morning. गोल्डन गीतों का खजाना लूट के ले जाना। लाइका रेडियो नेटवर्क पर यह है लाइका गोल्ड रेडियो और वही इसके स्टूडियो में मैं रवि शर्मा माइक्रोफोन के सामने आप सबको स्वागतम कहता हूँ। शुरू होता है मनोरंजन प्रोग्राम, एक एक गीत एक एक बात सब आपके नाम। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 21 तारीख और वक्त ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं। अब से लेकर दोपहर बाद 1 तक भाई जुड़ जाइए रेडियो के साथ, करते रहिए अपने काम भी। हम काम में रुकावट नहीं बनते, सहायक बनते हैं। और साहब आप हमारे काम में सहायक बनते हैं। मेरी जलती आंखों में उतरी है ठंडक, बदन में ये खूने रवां थम गया है। शजर फूल तकते हैं हैरान होकर, महकता हुआ गुलसिता थम गया है। समंदर में मिलना था जाकर इसे तो, मोहब्बत का चश्मा कहाँ थम गया है। ये निराला मिलन है, ये जालिम समय भी जहाँ था वहाँ का वहाँ थम गया है। बड़े हैं मुबारक कदम इसमें किसके, ये जमीन थम गई है, आसमान थम गया है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica Radio Network.

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
2: डरो मत सुनीता, मैं हूं ना यहाँ, आ गाओ।
1: अच्छा।

0: भाई रहता है तो किराया ले लो, और क्या रही उस पीछे पड़ के वो गा गा के उसको बंदे को जो है आप निकलवा के ही रहेंगे।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Very good morning. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स बताने जा रहा हूँ मैं। भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो भारतीय मुद्रा में एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग टुडे 130.25 रुपीज, 130 रुपए 25 पैसे। यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्ज़मैन बटर 20 kg sir 10.99.
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
6: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rivco Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
11: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
10: Click rivcotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Na to aaj barsaat ka mausam, na kahin chhai badariya, phir bhi more jiyaram chamke. अरे थम थम कोई बिझुरिया.
4: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

0: बदरा की बिजुरिया कैसी चमके और बदरवा के होते होते पानी ना बरसे, भाई ये सब आजकल जो है देखने को मिल रहा है। पानी बरस भी रहा है तो जैसे तरसा तरसा के किसी प्यासे व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं ना, ठहर जा आएगी बारिश। देखो आज कह रहे देखते हैं भाई कितनी आती कब आती है। लेकिन मुकेश जी और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना फिल्म बंधन से, और जिस गीत के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई वो गीत, भाई ये सीटी मारना बंद कर यार, मैं और कितना कम करूँ इसका वॉल्यूम। हाँ ठीक है, ओके अब नहीं आएगी। हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ आजकल सीटी का असर होता नहीं है, एक जमाना था जब सीटी का असर बहुत ज्यादा होता था। तो साहब जो पहला गीत था प्रोग्राम का वो हमने रविंद्र जैन की बनाई धुन पर, और कौन सा गंगा जैसा मन तेरा, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म जंगबाज से। मौसम से जुड़े गीत सुनवाते हुए ख्याल आता भाई हमारे पड़ोस में ना, मैं शीशे के अंदर दूसरे स्टूडियो में देख सकता हूँ हमारी जो कुलीग है खुशबू ओवरकोट पहन करके स्टूडियो में आई है। मैंने कहा था ना ठंड इतनी ज्यादा, भाई जब बाहर कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है तब भी स्टूडियो हमारे जमाने वाले। हाँ आप अगर भाई एक गिलास पानी ला के रखे थोड़ी देर में बर्फ बना के ले जाए यहाँ से, और ये ठंडे रखने पड़ते हैं, कहते हैं कि भाई मशीनें बहुत गर्म हो जाती हैं, भाई ठंड में सिकुड़ के हम, मेरा कद छोटा हो गया सही बताऊं आपको। अभी खुश को भी वो शेर जाके सुनाना है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजाई कहाँ है।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a
3: radio.
0: लाइका गोल्ड पर भाई खबरों का समय हुआ जाता है, और खबरों में आजकल छाए हुए हैं भाई वो हैरी और उनकी पत्नी जो है मेगन। अब सोचने वाली बात यह है कि उनकी वापसी के कार्यक्रम को लेकर के खूब बातें हो रही हैं। एक तो भाई बच्चों की तालीम के लिए वो आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, यहाँ की एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि वो मेगन जो है ना वो एक्टिंग के फील्ड में वापस लौटना चाहती हैं। ठीक है भाई काम तो काम है करना है, आप आइए स्वागत आपका, लेकिन बस सवाल वही उठता है कि सिक्योरिटी पर आपकी जो खर्च होगा तो क्या वो रवि शर्मा की पॉकेट से जाएगा, मेरा मतलब टैक्स पेयर्स की जेब से जाएगा, या फिर भाई कुछ लोग कहते हैं कि उनका पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है, अपनी मर्जी से अमेरिका गए थे, मर्जी से वापस आ रहे हैं, पर टैक्स पेयर्स उनकी सिक्योरिटी पर होने वाला खर्च क्यों उठा रहे हैं भाई, इस पर चर्चा ये आपको खबरों में विस्तार से सुनने को मिलेगा। और क्या क्या है आज के प्रमुख समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खास खबरें सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में आज जयपुर ग्रामीण के एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने पहुंचे काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन आशुतोष रांका, और भी कार्यकर्ताओं को साथ ले गए। भाई दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने से जो कामयाबी उन्हें मिली कि उनकी डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया जाए, वो ले लिया। अब वो कहते हैं अब हम और आगे बढ़ेंगे, और अब वो केंद्र से निकलकर दिल्ली से निकलकर जयपुर पहुंच गए हैं। वहाँ एक गांव ग्रामीण इलाके में पढ़ने वाले स्कूल की विजिट करेंगे वहाँ पर, और वहाँ जाकर के वो डिमांड करेंगे स्कूल की हालत सुधारी जाए, बिल्डिंग बनाई जाए, दीवारें ठीक की जाए, बच्चों के लिए फैसिलिटी हो। अब साहब जैसे अब वो पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वहाँ उनका बड़ा विरोध हुआ। आरोप है कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट भी की, गांव वाले कहते हैं बाहर निकल जाओ हमारे बच्चे हमारा स्कूल, आगे राजनीति करने थे। एनीवे वीडियो आई है वहां की, उसमें दिख रहा है कि ग्रामीण लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। सीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन आशुतोष राका ने इल्जाम लगाया है कि गांव में बीजेपी के बुलाए हुए लोग विरोध करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोध से वो डरने वाले नहीं है। राजनीति साहब, पाकिस्तान की बात करें तो मेडिकल जांच के बाद इमरान खान को फिर से अडियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया पर बताया कि फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद अस्पताल से वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात इमरान खान को कड़ी सिक्योरिटी के बीच अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि आंखों के डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन समेत एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने इमरान खान की विस्तृत मेडिकल जांच की और उन्हें चिकित्सीय रूप से हेल्दी पाया। ठीक है वो। अताउल्ला तरार के मुताबिक इमरान खान की बहन उज्मा खान जांच और इलाज की पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरे प्रोसेस में वो उनके साथ मौजूद थी। हालांकि भाई इस बताया जा रहा है कि इमरान खान को कल देर रात रावलपिंडी की अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अफसरों की ओर से और सरकारी तौर पर अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी कोई ऑथेंटिक बयान जारी नहीं किया गया है। भारत से खबर आ रही, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने वंदे मातरम के गायन को लेकर चल रही पॉलिटिकल बहस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि देश में इस बात को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। वंदे मातरम पूरा गाया जाए या इसके शुरुआती दो छंद गाए जाएं या इसे ना गाया जाए। मायावती ने एक्स पर लिखा कि वंदे मातरम के गायन को लेकर हाल ही में संसद में जो कानून पास किया गया है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुए हैं कानून पास। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों में सत्ता परिवर्तन के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर अपने पॉलिटिकल स्वार्थ या फायदे के हिसाब से पहले की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों में बदलाव करते रहते हैं। इसराइल का वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्रोजेक्ट क्या है, इस पर ब्रिटेन समेत 5 देशों ने ऑब्जेक्शन किया है। इसराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली एक महत्वपूर्ण इलाके में करीब 1200 नए सेटलमेंट घर बनाने के लिए टेंडर जारी करने की योजना बनाई है। इस फैसले की अमेरिका के कुछ खास सहयोगी देशों ने भी कड़ी आलोचना की है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने एक सांझे बयान में इस फैसले को नाकाबिले मंजूर बताया है और इसराइल से इन योजनाओं को तुरंत वापस लेने की अपील भी की है। और जनाब, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने न्यूयॉर्क की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर इल्जाम है कि वो आल्बनी में राज्य की कैपिटल बिल्डिंग, वो जो बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, कैपिटल बिल्डिंग को बम से उड़ाकर वहां मौजूद सांसदों को मारने की योजना बना रही थी। अभियोजकों के मुताबिक 35 साल की जेसिका बीवी ने पहले ही इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी वफादारी जताई थी। उस पर एक ऐसे विदेशी टेररिस्ट संगठन को मदद या संसाधन देने का आरोप लगाया गया है, जिसे अमेरिका ने टेररिज्म का ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। क्रिमिनल शिकायत के मुताबिक बीवी ने कथित तौर पर अंडरकवर एजेंट से कहा था कि मैं इमारत का जितना हो सके उतना हिस्सा नष्ट करना चाहती हूं और सीनेटर्स को मारना चाहती हूं। बताया जा रहा है कि बीवी ने न्यूयॉर्क की स्टेट कैपिटल बिल्डिंग को इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि यह व्हाइट हाउस की तुलना में आसान निशाना रहेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरत पड़ती तो वो ईरान पर 100 बार और हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि अगर वो ईरान पर कार्रवाई नहीं करते तो आज इसराइल और पूरा मिडल ईस्ट तबाह हो चुका होता। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए फिर से संगीत की तरंगों की तरफ, उमंगों की तरफ, और सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को।

0: and tasty noodles in 12 flavors.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ ओल्ड ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई, दुबई के लिए उनके पास जो बड़ी जबरदस्त डील्स हैं। एंड भैया अगर आप कहाँ हैं वो डील्स, यही वो कह रहे हैं कि पहले एक बार जो आदेश जारी हुआ था कि भाई वह जरूरी हो तभी जाएं दुबई, वो सब उठा लिया है। अब वहाँ पर सैलानियों को इनवाइट किया जाता है, आप पहुंचिए सैर सपाटे के लिए। और साउथ ओल्ड ट्रेवल इज नॉन फॉर कम्पिटिटिव हॉलीडेज डील्स टू दुबई, तो उनसे संपर्क कीजिए। साउथ ओल्ड ट्रेवल का फोन नंबर है 0208574 8410 एंड साउथ ओल्ड ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: लता मंगेशकर की आवाज, सॉन्ग टेकन फ्रॉम फिल्म खून पसीना। मुझे याद है भाई यूनिवर्सिटी के दिनों की बात, जब मैंने पूछा लड़की से कि कौन सी फिल्म देखने जा रही हो आज, तो वो पूरा नाम ना बताए, वो कहे खून असीना। मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है, खून असीना। बाद में पता लगा भाई वो अपनी लिपस्टिक खराब नहीं करना चाहती थी, होठ मिले पसीना कहे तो वो लिपस्टिक खराब हो सकती थी।
1: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: खून पसीना फिल्म का गीत सुनाने के बाद अब मैं बता रहा हूँ आपको भाई, रेट्स लैम्फाई के नोट कर लीजिए। एक पाउंड के बदले इन डिफरेंट करेंसीज कितना दे रहे हैं वो, भारतीय करेंसी में 130.78 रुपीज फॉर वन पाउंड, पाकिस्तानी 379.3, श्रीलंकन रुपए 450.46, बांग्लादेशी टके 167.35 और अफगान अफगानी 90.06।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: और साहब गोल्ड का रेट बता दूं, नोट कीजिए, आज सोने का भाव काफी ऊपर चढ़ गया है। द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 107.84 पाउंड्स पर ग्राम।
1: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड लेस्टर और कॉल 0116 266 4278।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: इस दिसंबर ठंड को goodbye.
7: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Leica Radio.
1: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.
11: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
12: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
13: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
14: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk.

स्वागत है आपका। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है और लाइका रेडियो मिडलैंड भाई, आप जहां जहां तक हमारी आवाज सुन रहे हैं, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और याद दिला दूं, माय नेम इज रवि शर्मा, दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। वक्त हो गया है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार।

आज के चिंतन में शामिल करने के लिए भाई हमें पंडित विश्व प्रकाश ने आलेख भेजा है और वो याद दिला रहे हैं एक महान शहनाई वादक की। नाम तो सुना होगा आपने, आज उनका जन्मदिन है। भारतीय संगीत के लिए ये भावुक करने देने वाला दिन है क्योंकि इसी दिन महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का निधन हुआ था, इंतकाल हुआ था। लेकिन साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया से जाकर भी दिलों में बने रहते हैं। बिस्मिल्ला खां साहब भी उन्हीं में से एक थे। शहनाई को पहले शादी ब्याह का ही साथ समझा जाता था या धार्मिक समारोह में ये जो है स्वर इसका सुनाई पड़ता था, लेकिन बिस्मिल्ला खां साहब ने शास्त्रीय संगीत के बड़े से बड़े मंच तक शहनाई को पहुंचाया। और जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली तब राजधानी दिल्ली के लाल किले से खां साहब की शहनाई की स्वर लहरियां भी इतिहास का हिस्सा बनी। बिस्मिल्ला खान शहनाई का जैसे पर्यायवाची शब्द है। 2001 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वे केवल कलाकार ही नहीं बल्कि भारतीय कल्चर के सांस्कृतिक एकता के प्रतीक थे। कैसे? वो कहते थे कि संगीत तो जोड़ने का काम करता है। संगीतकार कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, प्रेम करते हैं श्रोताओं से, संगीत प्रेमियों से। उन्होंने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, गंधर्व कॉलेज, और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भाई आज का दिन कहते हैं कि महान संगीतकार को याद करने का दिन है, और याद करने की वो बात भी है उनके जीवन से जुड़ी हुई कि भाई वो मंदिर के चबूतरे पर बैठ करके शहनाई बजाते थे। वाराणसी में लोग जमा हो जाते थे जब वो नियम से बजाते थे, फिर एक बार माहौल बिगड़ने लगा तो कुछ लोग उनके पास आए कि खां साहब आप मंदिर के चबूतरे पर शहनाई नहीं बजाएंगे। उन्होंने कहा रोक के दिखाओ, मैं तो बचपन से बजा रहा हूं और तुम रोक के दिखाओ यही बजाऊंगा। आखिरकार भाई वो लड़के चले गए, कुछ भटके हुए नौजवान थे, तो उन्होंने कहा कि ये शहनाई ये संगीत किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, मैं तो अपने उस अल्लाह के लिए, उसे खुश करने के लिए, और उसमें आप सबको भी प्रसाद मिलता है, जात वर्ण आश्रम मत पंथ मजहब। बच्चों ये बांटने का काम तो हम लोगों ने किया है, ईश्वर ने हम सबको जो बनाया है जैसा बनाया है उसमें एक दूसरे से रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमारा खूनदान एक है, काट के देखो सबका खून लाल रंग का निकलेगा, क्योंकि हमारा खूनदान और हमारा खानदान एक है। शहनाई का ये स्वर एकता का प्रतीक बन गया बिस्मिल्ला खां साहब के कारण। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो

0: बिस्मिल्लाह खान साहब जिनकी आज पुण्यतिथि है, बरसी है। भाई काशी जी में मंदिर के चबूतरे पर बैठ करके शहनाई बजाते थे, और क्या शहनाई बजाए, पूरे विश्व के स्तर पर भाई वो मशहूर हुए शहनाई के कारण। आज उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, पर श्रद्धा से याद करते हैं उनका ये व्यवहार भी कि बजाऊंगा मंदिर के चबूतरे पर ही बैठकर, अपने रब के लिए बजाता हूं, इसलिए उसके उसकी दहलीज पर बैठ के बजाता हूं। हिंदू और मुसलमान का भेद मिटाने के लिए भाई उन दिनों काफी गर्म माहौल था, और ऐसे में अगर इसी का कारण हुए फिर जो है भारत सरकार ने सम्मानित किया। फिर याद दिला दें आपको, आज उनका भाई स्मृति दिवस है, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। 2001 में भारत रत्न दिया गया उन्हें, वो भारतीय कल्चर की प्रतीक माने जाते थे। और साहब 1901 में उन्होंने लाहौर में गंधर्व कॉलेज की स्थापना की, और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्हें श्रद्धा से याद करते हुए आज का चिंतन समेटते हैं, और भाई धन्यवाद देते हैं पंडित विश्व प्रकाश जी को जिन्होंने आज की चिंतन के लिए आलेख भिजवाया। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन,
0: आइए लौटते हैं अब अपने कार्यक्रम के मूल रंग की ओर। पहले सुनवाते हैं आपको पाउंड का रेट, कुछ बदलाव आया कि सुबह से रेट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सुनिए, भारत पैसे भिजवाने चाहते हैं, भिजवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का ये संदेश आपके नाम हो सकता है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Today's rate is For £1 SBI UK दे रहे हैं 130.25 रुपीस, 130 रुपए और 25 पैसे। You can transfer via branch, online और by using the YONO SBI UK mobile app. शर्तें लागू।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू, और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लेस्टर LE5 4UN।
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation,
7: in Dubai.
6: Lister. नवरात्रि ની ધમાકેદાર રાતો માટે થઈ જાવ રેડી। KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026, 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957477330. Radio Partner, Leica Radio.
8: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments, and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
9: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
2: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.
10: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.

0: आज के प्रोग्राम में एक कंपटीशन होगा।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: आज के कार्यक्रम में भाई अभी स्क्रीन पर मैसेज आया कि आज के प्रोग्राम में रवि शर्मा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा और 2 टिकट्स इनाम में देगा। कौन से शो के, किस कलाकार के, नोट कर लीजिए। लाइका रेडियो नेटवर्क एंड अनुज चोपड़ा फाउंडेशन एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, चैरिटी प्रोग्राम है और ये कार्यक्रम है अनूप जिलोटा साहब का।

An evening filled with ghazals and elegance featuring legendary Anoop Jalota. Hosted by Anisa Nasir. 30 तारीख को भाई 30 अगस्त को क्वींस थिएटर रॉमफोर्ड में है. शाम 6 बजे शो है, 5 बजे डोर खुल जाएंगे.

लीजिए सब कंपटीशन के बारे में बता दें आपको, ये अनूप जलोटा जी की लहराती आवाज, बलखाती आवाज, हंगड़ाइयां लेती आवाज, चांद और चांदनी का एहसास कराती आवाज गूंजेगी 30 तारीख को क्वींस थिएटर में जो रोमफड़ में है। और भाई अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो जस्ट विजिट queens-theater.co.uk, क्वींस फिर -, मुस्कुराती है मंजिल, theater.co.uk। और जीतना चाहते हैं तो अभी बताता हूँ कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है।

0: भाई ये गजल सुनवाते हुए आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हमारा यूके का फर्स्ट गजल रेडियो स्टेशन जो है वो खुलने जा रहा है।
1: एक भूली हुई सी कहानी,
0: आप जुड़ेंगे, गजलों का भंडार होगा वहाँ पर।
1: फिर मुझे याद
0: आने लगी है, चांद अगड़ाइयां ले रहा है। कंपटीशन की भाई बारे में बता दूं कि कंपटीशन में जो विनर होगा उसको टिकट जो है बॉक्स ऑफिस से वहां से जाके कलेक्ट करनी होगी। वी आर गिविंग टू टिकट्स, सिंपली सेंड द वर्ड गजल्स फॉर यू टू बी ए इन द कंपटीशन, टू बी इन टू विन, वाह टू बी इन टू विन। हाँ तो हमारा फोन नंबर तो याद है ना, जहां पर आपने टेक्स्ट भेजना है, व्हाट्सएप का नंबर। संडे 30 तारीख को क्वींस थिएटर रॉमफोर्ड में हो रहा है शो, शाम 6 बजे शुरू होगा लेकिन 5 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। स्वयं अनूप जलोटा साहब अपनी आवाज की स्वर लहरियां जो बिखेरेंगे, और ब्यूटीफुल थिएटर है, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, और फिर आप जानते हैं कौन कंपेयर कर रही है शो को, गजलों की डायरी नहीं शायरी की डायरी। और ये स्वर लहरियां, तो भाई गजल लिख के भेजिएगा 2074242323 और गजल की तो कैपिटल में लिख दीजिएगा, फिर अपना नाम अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा।

0: The winner will be announced in the next hour, and winner will collect his tickets, two tickets, from the theaters or box office. क्या बात, इंतजार है लोगों को. अनूप जलोटा, अनूप जलोटा आ रहे हैं अनुज चोपड़ा फाउंडेशन के लिए. भैया चैरिटी कार्यक्रम उनकी स्मृति में हो रहा है, तो मुझे यकीन है आप भेजना शुरू करेंगे. ओ आ रही है भाई एंट्रीज, 07424 23 23 23.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले वही श्रोता ध्यान से सुन ले, आपको अपना नाम और अपना फोन नंबर भी साथ लिखना है। गजल तो लिखना ही है। ऑल द बेस्ट।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Radio.
0: Leica Extra Podcast Update.
4: Aur bhai, लायका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड अब चल रहा है, खूब लोकप्रिय हो रहा है. द टाइटल ऑफ द न्यू एपिसोड इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? क्या सोने में पैसा लगाना सचमुच बहुत फायदेमंद है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये? होस्टेड बाय रवि शर्मा. ये कौन है शर्मा जी? कोई अच्छे नेक दिल इंसान लगते हैं भाई, सुनने में तो अच्छे लगते हैं. पर रियली विश्वास कीजिए, सोने में पैसा लगाना सचमुच फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है. और कहते नुकसान कोई नहीं है भाई. बात यह है कि और कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं उनमें कीमत उसकी बढ़ती है, वो कितना फायदेमंद साबित होता है, लेकिन सोने में तो बढ़ती ही बढ़ती है. आज सचमुच जिस रेट पर बिक रहा है मैं हैरान हूं कि थोड़ा सा नीचे आया था फिर उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा ऊपर चला गया. एनीवे मैन, लेट मी रिमाइंड यू, यू मस्ट वॉच दिस. गोल्ड प्राइसेस आर सोरिंग बट हु इज रियली कंट्रोलिंग द गेम विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द मीनार ज्वेलर्स डायरेक्टर. बहुत जाने माने प्रतिष्ठित जो है स्वर्णकार हैं हमारे प्रवीण भाई पटनी जी. और प्रवीण भाई पटनी ने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि सोना क्यों एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. तो देखिएगा और भाई सीखिएगा, समझिएगा उनसे. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Leica Radio.
3: Leica Radio.
5: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
6: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Function rakha hua hai.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376. स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में
4: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने तो एक सवाल का जवाब दे
5: पूछ ही लो सर
4: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं
5: फरवरी सर
6: सर साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं
1: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस
4: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा
7: यू आर बोथ ऑन द सेम रोड सेम टारमैक सेम रूल्स जस्ट अ डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
8: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
2: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
9: लीजिए एक बार फिर याद दिला दे आपको कि भाई श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से जो है आराधना की जाती है गोरी की भी गोरी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और नोट कीजिए साहब, स्विफ्टली की रेट्स आज एक पाउंड के बदले कितने पैसे दे रहे हैं वो? लेट्स फाइंड आउट. फॉर वन पाउंड इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 130.74 रुपीस, पाकिस्तानी 379.47, श्रीलंकन 450.48, बांग्लादेशी टकाज 167.2 और अफगान अफगानी 89.86.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: Like a radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Like a Radio.
1: और साहब सोने का भाव जबान लड़खड़ाती है बताते हुए, क्योंकि सोना नहीं शर्माता ऊपर जाते हुए, मेरा मतलब प्राइस बढ़ाते हुए. द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 108.1 पाउंड्स पर ग्राम.
0: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स. विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating market और ब्यूटीफुल टेम्पल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
8: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
11: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
10: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: नोक झोंक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
4: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
5: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
6: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें थी इस गीत में शामिल। और इससे पहले जो गीत हमने सुनवाया था, तेरा बिटवा जवान हो गया, शरारती में गौतम गोविंदा फिल्म का गीत था वो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम बिकॉज इट्स अ गुड रेट एट द मोमेंट। लेट मी टेल यू व्हाट रेट दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड। एक पाउंड के बदले मैक्सिमम 130.25 रुपीज, 130 रुपए और 25 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI मोबाइल ऐप जो है उनका, उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 pieces से शुरू। और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation,
7: in Dubai.
8: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए। हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
9: लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर। 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट 5 pounds। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल बीचेस 07957477330। मस्ती, म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the...
13: Coast Guard, help!
12: Okay, help's on its way.
14: Grab my hand!
12: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
15: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
16: Laika Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहनों भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक कौन है इस सप्ताह? कौन है? वो है साहिर लुधियानवी. यस, और साहिर साहब के भाई एक से बढ़ के एक गीत हमारे पास हैं, और उनमें से कौन सा सुनवाएं आपको? अरे वो तो गीत ही गायब हो गया भाई. ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है किसी से जुदाई. ये शब्द किसने लिखे, कौन सी फिल्म के लिए लिखे, और उसमें भाई इस समय प्रोग्राम में शामिल करने का प्रयोजन क्या है? तो सुनिए ये गीत, पहले एंजॉय कीजिए, फिर हम बताते हैं. आर्टिस्ट ऑफ द वीक की कलम से जन्मा है ये गीत, और ये गीत है, पहले तो थोड़ा सा ये सुन लीजिए भाई. ये बता दूं मैं आपको कि हाँ, ये आ गया गीत थोड़ा और ऊपर. हाँ, एक तो बड़ी अच्छी भाषा है और वजन और गीत और फिर धुन भी ऐसी है, सुनिए, भावुक कर देगी आपको.

0: बड़े सॉन्ग। और भाई देखिए कितना दर्द और कितनी वो इमोशंस इस गीत में भरे हुए हैं। पर जिन्होंने लिखा ये गीत, भाई उन्होंने शादी की नहीं, बेटी को विदाई देते वो तो बहुत दूर की बात है। और साहब वैसे साहिर साहब के नाम के साथ जो नाम जुड़े उनमें अमृता प्रीतम का एक नाम रहा, बहुत अच्छे मित्र थे वो, लेकिन अमृता और इनकी शादी नहीं हुई। अमृता ने प्रीतम के साथ शादी करके अपना नाम अमृता प्रीतम बना लिया। लेकिन उसके बाद भी साहित्य की दृष्टि से भाई दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे सहयोगी रहे, मित्र रहे। और फिर बाद में कुछ समय के लिए साहिर लुधियानवी का नाम सुधा मल्होत्रा के साथ भी जुड़ा, पर वहां भी इनकी शादी नहीं हुई। तो भाई ये शायर लोग तो शायरी से ही शादी कर लेते हैं, यानी अपनी डायरी से ही शादी कर लेते हैं। ही वॉज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक। और भाई उनके बहुत सारे गीत आपने सुने, अभी और भी सुनेंगे संडे तक, लेकिन वो भाई साहिर साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन गीत उनके हैं, रहेंगे हमेशा।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

ये आवाज पहचानी आपने? अरे साहब यही आवाज तो गूंजने जा रही है 30 तारीख को, भूलिएगा नहीं। अगर आपने अपनी टिकटों का इंतजाम कर लिया तो बहुत अच्छी बात। ये अनूप जलोटा की आवाज थी गीत के शुरू में, गीत आगे लता जी की आवाज में है। अनूप जलोटा मल्टी टैलेंटेड भाई, वो म्यूजिशियन भी हैं, गायक भी हैं और कभी लेखक का भी जो है दायित्व निभा लेते हैं। अनूप जलोटा होस्टेड बाय अनिसा नासिर, अनुज चोपड़ा फाउंडेशन के लिए 30 तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हैं। गजलों का प्रोग्राम है, लेकिन हो नहीं सकता कि वो एक आध भजन भी ना गुनगुनाएं। वहां पर फरमाइश आएंगी तो वो जरूर पूरी करेंगे। फिल्मों में भी उन्होंने गाए हैं बहुत सारे गीत, लेकिन मुझे यकीन है कि चांद अंगड़ाइयां ले रहा है वो तो जरूर अंगड़ाई लेगा गीत थिएटर में। नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिशन हमारा चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है। 2 टिकट हम फ्री में दे रहे हैं विनर को, जिन्होंने गजल लिख करके अपना नाम और फोन नंबर भेजा है। उनमें से कोई एक विनर अभी अनाउंस किया जाएगा, लेकिन बाकी आप टिकटें खरीद सकते हैं। यू कैन विजिट www.queens-theatre.co.uk। क्वींस थिएटर रोमफोर्ड में है, रोमफोर्ड में कि हॉर्न चर्च में, दोनों लिखिए भाई। RM111QT ये है पोस्ट कोड। अपने रेडियो के नजदीक आ जाइए, हमने बहुत जल्द अभी रिजल्ट अनाउंस करना है, आने वाला है।

0: लता मंगेशकर की आवाज और आई एम श्योर लक्ष्मी प्यारे की बनाई धुन होगी। इसके गीत के शुरू में भाई अनूप जलोटा जी की आवाज थी और अनूप जलोटा जी के शो के विनर का नाम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो बॉक्स ऑफिस का फोन नंबर दे देता हूं, 01708443333, 01708443333 ये बॉक्स ऑफिस का नंबर है। और भाई अगर आप विजिट करना चाहें उनके वेबसाइट पर तो www.queens-theater.co.uk। और भाई जीतना चाहते हैं तो आपने जोर लगा लिया, आपने बहुत सारी एंट्रीज भेजी हैं और उनमें से जो विनर हैं अच्छा आप हैं विनर, और साहब आप हैं विनर जिनके फोन के आखिर में क्या आता है, फोन के आखिर में है आपके नंबर के, भाई कहाँ है 507 आपके फोन के आखिर में आता है और आपका नाम है वीरेंद्र चौधरी। भैया आप दो टिकट्स जीते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि टिकट्स आपको बॉक्स ऑफिस पर मिलेंगे, आप समय से पहुंच जाइएगा, 5 बजे डोर ओपन्स एंड द शो स्टार्ट्स एट 6 o'clock, और एड्रेस मैंने बता दिया है क्वींस थिएटर, और बहुत मशहूर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल थिएटर है, इट इज ऑन क्वींस थिएटर बिलेट लेन हॉर्न चर्च RM1111QT। तो ये पोस्ट कोड है, समय से पहुंच करके अपने टिकट क्लेम कीजिए, आपका नाम आपका फोन नंबर वहां पर पहले से होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहनों भाइयों कंपटीशन खत्म, दो टिकट हजम, लेकिन बहुत सारे टिकट्स जो हैं अभी हैं आपको मिल सकते हैं। ये 30 तारीख को है कार्यक्रम, संडे है उस दिन 30 अगस्त 2026, तो सी यू देयर, और विनर को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, दो टिकट्स आपके वहां पर बॉक्स ऑफिस में मिलेंगे। ये गीत कौन सुनवा रहे थे?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और लीजिए साहब अगला गीत सुनवाने से पहले एक सूचना हमारे पास आई है। क्या सूचना है? सूचना ये है कि आप सभी सीनियर सिटीजन्स को, भाई हमारा कार्यक्रम तो सुनते ही सीनियर सिटीजन है ज्यादा, आपको बताऊं, क्योंकि पुराने गीतों से लगाव उन्हीं का होता है, और अक्सर कोई नौजवान बच्चे मिल भी जाएं, एक ने कहा मुझे आपकी फोटो लेनी है, मैंने कहा भाई बड़ा यंग फैन है मेरा, तो मैंने कहा भाई ले लो, कहता है कि आप फोटो पाड़ू छो मारी बाप माटे। हमारी बाप बहुत सुनती है आपको, अब हमारे फादर हमारे दादाजी नानाजी भाई वो सब मेरे हिस्से में आते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, सुनते हैं, वरना तो आजकल कौन किसकी सुनता है। तो आज भाई उन सीनियर्स के नाम का दिन है, सभी वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन्स को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है आज, यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। तो सारे बुजुर्गों को, हालांकि उम्र जस्ट ए नंबर, आप तो दिल से जवान हैं बिल्कुल मेरी तरह, आप सबके नाम एक गीत लगाने को जी चाहता है, मंजूर करेंगे?
1: This is Like a Radio.
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: तो बुजुर्गों के लिए भाई लिखा है कि आपकी इम्पोर्टेंस, आपका बड़प्पन, आपका मार्गदर्शन बहुत बहुत कीमती है। अपने आप को अब वो क्या कहते हैं कि गया गुजरा ना समझे, खर्च हो गया ना समझे, अगर आप नहीं होंगे तो किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए वहां ए कबूतर तेरे पर चिट्ठी कौन बांधेगा, पर यानी पंख, वहां पर ए कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा, ये बाजारे सियासत है यहां खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कांसा है मुट्ठी कौन बांधेगा, और मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी, पर हमेशा सोचती रहती है कि गठरी कौन बांधेगा, और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा।
4: 60 साल के और तुम होगी 55 की।
0: बुजुर्गों को सलाम।
4: बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
5: क्या क्या क्या

श्रीनी शाह याद दिला रही है भाई, कहते हैं कि हम मंथली मीट मतलब हर महीने मिलते हैं, कौन एल्डरली पीपल, भाई सभी बुजुर्गों को सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, राह दिखाते हैं, अनुभव जताते हैं, बताते हैं।

0: Breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel का संदेश है. They are very well known for its competitive holiday deals to Dubai. और भाई, contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: Let me remind you, भाई, winner for the program of Ghazals, भाई अनूप जलोटा जी, जो अनुज चोपड़ा फाउंडेशन की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 30 तारीख को. उसके विनर का नाम अनाउंस हो चुका है. फिर बता दे, वीरेंद्र चौधरी इज द विनर एंड 2 tickets विल बी वेटिंग फॉर यू चौधरी साहब. थिएटर में समय से पहुंच जाइएगा. और भाई, कॉम्पिटिशन और भी हैं और कितने ही तरह के प्रोग्राम्स. लाइका रेडियो नेटवर्क लगभग कितने ही प्रोग्रामों से जुड़ा है. आपको अवसर मिलते हैं, यहीं पर गीत मिलते हैं, यहीं पर चटपटी बातें और भाई अटपटे इंसिडेंट्स भी मिलती हैं, खबरें भी मिलती हैं. आपका अपना लाइका रेडियो नेटवर्क.
2: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: And let me tell you the rates by... एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 130.64 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 378.76 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 449.46, बांग्लादेशी टके 166.82 और अफगानी 90.01.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
3: Well, the gold is trading at the rate of 108.32 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
4: Leica Radio.
5: अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: I happen to happy valley feeling like a Diwali.
8: It's back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
8: On Sunday, 1st November 2026, at the Ramgarhia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
8: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything, from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410. दैट्स 8574 8410.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
13: Nun Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
1: Manoranjan
14: विद रवि शर्मा।
3: और लीजिए साहब, चलने का समय हो गया है। बात बता दूं आपको कि बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे एक बजे की खबरों के बाद। रवि शर्मा इस साइनिंग ऑफ याद दिलाते हुए कि भाई जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, उससे पहले राखी का त्यौहार आ रहा है। राखी है 27 तारीख को और जन्माष्टमी 4 और 5 सितंबर को यहाँ लोग मना रहे हैं, तो आधी रात तक आयोजन होते हैं। हम सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब भाई दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। शक जब होता है ना तो ना परिवार चलता है ना कारोबार चलता है। पार्टनर से एक दूसरे पर भरोसा ना करें, पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा ना करें, बच्चे अपने परिवार पर भरोसा ना करें। दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो। और कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज तुम उनको जाने ना दो। अनुमति दीजिए, बाय बाय, हैव अ सुपर्ब वीकेंड।

आज सुबह अरविंद भाई की मोटर चली गैराज पे एमओटी के लिए और ये गाना पैदा हुआ। एमओटी फेल हो गया, इन्होंने मुकेश का गाना शुरू कर दिया, लेकिन हम उनको तसल्ली देंगे, एमओटी फेल हो गई है, चलो देखते हैं क्या हुआ।

0: अरे आज तो हंगामा हो गया। सुबह सुबह अरविंद भाई की मोटर चली, पम पम पम, खुशी खुशी गैरेज पहुंच गए और इन्होंने कुछ खाली नंबर प्लेट प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए फेल कर दिया। इट्स टेरिबल ऑनेस्टली, सिर्फ इंजन देख के पास कर दो भैया, ये सब क्या नंबर प्लेट का मामला। आप छोटी छोटी बातों पे हमारे अरविंद भाई को दुखी कर रहे हो। तो हमने अरविंद भाई से पूछा कि क्या मूड क्या है, क्या फीलिंग है। बोले कि ऐसा ही 100 पाउंड तो खर्चा तो हो ही गया है, अभी नंबर प्लेट दूसरी करा के कल दूसरी वापस ले जाएंगे। इट्स जस्ट नथिंग बट एक वीकेंड की बुरी शुरुआत हो गई, लेकिन मेरा इरादा है हम उनका मूड बनाएंगे। ओके, वी शैल डू दैट। इट्स अ फ्राइडे एंड यू शैल हैव अ वंडरफुल वीकेंड अरविंद भाई, हताश मत होइएगा। ओके, वी शैल कैरी ऑन द जर्नी। एंड एक तरफ ये सैड न्यूज है, दूसरी तरफ बड़ा हैप्पी न्यूज है, बिकॉज एजेस ऑफ चैशम, हमारे नंबर वन लिसनर ऑन द रेडियो, इनकी 58th बर्थडे है। दैट्स राइट, 58। तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस आवर वी गोना सेलिब्रेट हिज बर्थडे बाय प्लेइंग अ वंडरफुल सॉन्ग। ओके, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, Alexa, गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। एंड व्हाट डे इज इट, 409th डे ऑफ लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स एंड बर्मिंघम वालो हमारे। ओके, एंजॉय योरसेल्व्स। 4 बजे सैंडी शाह आएंगे और उसके लाइक रेडियो मिडलैंड्स पे ऑफ कोर्स अनिका इन प्लेस ऑफ राज पतंजी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। सेकंड आवर में ट्रिब्यूट है, जुड़े रहिएगा। ट्रिब्यूट ऑफ अ ग्रेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, व्हाटएवर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 130.25. Yes, 130.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Gemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: One performer.
5: के सामने तो प्रोसन से कहने, क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
6: Countless personalities.
7: जिंदगी बर्बाद हो गया।
1: A whole universe of entertainment.
8: फंक्शन रखा हुआ है।
6: सुनील ग्रोवर लाइव UK टूर 2026.
1: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
6: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
9: high appreciation.
10: In Dubai.
11: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
12: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
13: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
14: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
15: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: दस्तार गिर गया हाथ से। गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलते हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Aap hatash mat ho, hum aapko cheer up kar denge Arvind bhai.
0: Wake up to Kajal on Breakfast every weekday at 6 a.m. And drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like a radio.
2: आपके लिए हेलन आ गई आपको चीयर अप करने के लिए. बीच पे डांस कर रही है और ये कह रही है, हेलन टू अरविंद भाई.

0: सो देयर यू गो अरविंद भाई, हताश मत होना, ये एमओटी वापस हो जाएगा और गम छोड़ के मनाओ रंग रेली. एंड ऑल द पीपल दैट हैव मैसेज्ड मी, दे ऑल एग्री विद मी. नाजिया शकील एंड महेंद्र पटेल, भरत गंगाराम, अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल, मिकी पाजी, अर्जुन जी, ऑफ कोर्स अर्जुन जी एंड किशोर पंड्या जी. यस, व्हाट अ लवली एंट्री टुडे. जैस्मीन जी, मनु जी, hey Jazz, happy birthday buddy, and Bharti ji and Rama Patel and Geeta and Harshad Joshi, kya surprise entry, my god. Pammy Singh ji, thank you very much. Arvind ji,
1: get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you. Lester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each. Ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 piece se shuru. Aur Herds बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99. फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
3: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
4: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट महाराजा टूर्स .co.uk और कॉल 07956154846.
2: लेस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी. KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th टू 20th अक्टूबर लाइव फ्रॉम इंडिया. गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर. टिकट्स जस्ट £5 से स्टार्ट. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल बीजे 07957477330. रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
6: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
5: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

ना तो हायर कचूमर रस्ते में निकल गया है अपना तो हायर कचूमर रस्ते में कभी न बिगड़े किसी की मोटर।

0: डर भी खतरा है।
1: एक तरफ सैड न्यूज है मोटी फेल हो गया और दूसरी तरफ गुड न्यूज है बिकॉज एनाबेल गॉट मैरिड टुडे इन मॉरिशियस। दैट्स नैथलीज डॉटर हु इज अ डॉक्टर एट गाइस हॉस्पिटल। So it's good news as well. So next song we should dedicate to, of course, Annabelle.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India.

0: Gold Rate is brought to you by Rahm Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio. Rahm Jewellers, specialising in diamond jewellery, platinum jewellery, 22 karat gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Rahm Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

हम भी प्यार का जाम देंगे किसको? हैप्पी बर्थडे एजाज विद दिस सॉन्ग.

शंकर जयकिशन का, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की लिरिक्स. एंड वी आर विशिंग आवर वंडरफुल लिस्नर एजाज 24/7, 365 days a year and 366 days in a leap year. He's always with us. Congratulations to the whole family and happy birthday, Ajaz. 58, but you don't look it. A cheerful song from film Kohra, Hemant Kumar. हेमंत कुमार का संगीत और कैफी आजमी की लिरिक्स है. एंड नेक्स्ट आवर वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन ओपी रालहन, द ग्रेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर.

0: इन गानों को सुनकर ना मुझे ओपी रालहन जी की याद आती है. ओम प्रकाश रालहन, who was born on 21st of August 1928, Sialkot, which is now in Punjab, Pakistan. Now, he passed away on 20th of April 1999 at the age of 70, before his 71st birthday. And dekha jaye to inka naam aata hai as a writer, as a producer, as a director, as an actor. लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, काफ़ी सालों के बाद इनको एक ओहदा मिला और उन्होंने लोगों की मदद भी की जब उनका नाम बन गया. चलो बात करते हैं. इनकी शादी हुई थी हमारे राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जी की बहन के साथ, मनोरमा जिनका नाम. अभी 21st August 1928 से लेकर 1947 तक सियालकोट में लिविंग विद अ प्रॉस्परस अरोरा फैमिली. इतनी प्रॉस्परस फैमिली, पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छा सा कारोबार, सब कुछ अच्छा चल रहा था. तब 19 साल की उम्र थी और 1947 में द फैमिली was compelled. I repeat, it was compelled to leave home. Aur border cross karke as refugees in his own country on the other side, which was India. Wahan pahunch ke kuch tha nahi haath mein, kuch bhi nahi tha, kuch kapdon ke siwaye. ना पैसे, ना कोई ज्वारात. दे हैड जस्ट लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड टू द टेरिटोरी विच रिमेन्ड विद इंडिया. नाउ हैविंग लॉस्ट ऑल देयर कैपिटल एंड बिजनेस, दे वर कंपेल्ड टू वर्क, छोटे मोटे काम करने के लिए. तभी ओपी यानी कि ओम प्रकाश वो छोटी मोटी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किया करते थे. अंटिल तकदीर का खेल, देखो तकदीर का खेल इतना अच्छा रहा. इनके जो ब्रदर इन लॉ राजेंद्र कुमार, जो एक जमाने में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको ब्रेक मिल गई और वो बड़े सुपरस्टार बन गए. ही बिकेम अ वेरी बिग एक्टर, ही बिकेम a big film star, I wouldn't say superstar, but he became a big film star, jinki sab filmein silver jubilee hits hone lagi. So itne mashhoor ho gaye, unhone Om Prakash ji se kaha, Om Prakash Ralhan, unko kaha ki aap ek film banao, aap distributors aur financiers se baat karo ki main aapka hero hu to aapko easily finance mil jayega. और वही हुआ. उन्होंने फाइनेंशियर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ राजेंद्र कुमार विल बी द हीरो एंड हीरोइन विल बी माला सिन्हा, जिनका नाम उस जमाने में काफ़ी ऊपर था. और फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की इन्होंने गहरा दाग, क्योंकि ही मैनेज टू गेट डिस्ट्रीब्यूटर्स टू फाइनेंस द फर्स्ट फिल्म गहरा दाग. 1963 की फिल्म, उसमें राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा, जैसे मैंने कहा. एंड फिल्म तो इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इनका नाम दर्ज हो गया अमंगस्ट डायरेक्टर्स. एंड देन केम द सेकेंड फिल्म. सेकेंड फिल्म, ओ माय गॉड, फूल और पत्थर. ही डायरेक्टेड इट हिमसेल्फ विद द कास्ट इंक्लूडिंग मीना कुमारी, शशिकला, धर्मेंद्र. आपने जो गाना सुना शीशे से पी या पैमाने से पी, पिक्चराइज्ड ऑन शशिकला. धर्मपाजी बिकेम अ सुपर हीरो ओवरनाइट एंड एक सुपरस्टार बनने के लिए ऐसी फिल्म चाहिए थी और धर्मेंद्र जी को मिल गई वो फिल्म. और ओपी रालहन जो जी को भी वो फिल्म मिल गई जिससे इनका नाम ऊपर आ गया. एंड उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक. ये फिल्म फूल और पत्थर तो तमिल फिल्म भी बन गई थी जो हिट हुई थी, जिसमें जयललिता थी हीरोइन। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिल्म तलाश 1969, यू नो, डायरेक्टर एंड आल्सो इट्स प्रोड्यूसर दैट वाज ओपी रेलहन, जिसमें अगेन राजेंद्र कुमार विद शर्मिला टैगोर, एंड दैट वाज अ ह्यूज movie that was the most expensive movie of those times, and it was a musical hit. Excellent music by Sachin Dev Barman. Ye gana aapne suna, Meri Duniya Hai Ma Tere Aanchal Mein, aur Talash ke sare gaane super duper hit ho gaye. Hum inko isliye yaad kar rahe hain because it is his 98th birth anniversary. ओम प्रकाश रालहन, इनका एक तरीका था काम करने का। ओपी रालहन इनके की कोलैबोरेटर्स जो थे, जैसे कि ही स्टक टू अ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंपोजर्स एंड लिरिसिस्ट्स टू क्रिएट क्या बोलते हैं हाई ड्रामा साउंड ट्रैक्स फॉर हिज फिल्म। हर एक फिल्म का म्यूजिक इतना हिट होता था, जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टर रवि मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड म्यूजिकल पार्टनर ऑफ ओपी रालहन, जिन्होंने फिल्म गहरा दाग, जो उनकी पहली डेब्यू डायरेक्शन थी, उसका म्यूजिक दिया था रवि ने, और फूल और पत्थर का म्यूजिक दिया था रवि ने। और रवि जी ने फूल और पत्थर में लिरिसिस्ट यूज किए थे शकील बादायूनी जी को फॉर बोथ द फिल्म्स गहरा दाग एंड फूल और पत्थर। एस डी बर्मन ने तलाश फिल्म की लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी की थी, एंड देन कल्याण जी आनंद जी को इन्होंने सिलेक्ट किया फॉर बंदे हाथ 1973 की फिल्म, और पापी 1977 की फिल्म। 1977 की फिल्म पापी के लिरिसिस्ट थे वर्मा मलिक। अभी इन्होंने कितने लोगों की लाइफ बना दी वो मैं आपको बताता हूं। He gave a break to Zinat Aman and Kabir Bedi. Zinat Aman, सब हम मैं जब भी किसी को पूछता हूँ कि Zinat Aman की पहली फिल्म कौन सी थी, दिल से हरे राम हरे कृष्णा देवानंद साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, ये बात सही नहीं है। उनकी फर्स्ट हिट फिल्म थी हरे राम हरे कृष्णा, लेकिन ब्रेक तो पहली फिल्म में दी थी ओ पी रालहन जी ने Zinat Aman जी को, and that was the film Halchal. He introduced Zinat Aman and Kabir Bedi. So in dono ko introduce karne wale of course O.P. Rallhan. Abhi aage jaate hue dekho to he boosted the careers of Amitabh Bachchan film Bande Haath. Tab wo itne jane pehchane nahi the industry mein Amitabh Bachchan, to unko ek boost mila film Bande Haath se. शम्मी कपूर और रागिनी, इन दोनों की लाइफ में जो बूस्ट आया एक एक्टिंग में, एंड दैट वाज फिल्म मुजरिम एंड धर्मपाजी को स्टार बनाने वाले फूल और पत्थर फिल्म से, वो भी ओपी रालहन। दैट्स व्हाई वी आर रिमेम्बरिंग हिम टुडे। उनके नाम का एक चौक है, बांद्रा चौक। बांद्रा में एक चौक है जहां पे इनका नाम है ओपी रालहन चौक, एंड द ओपनिंग ऑफ दैट चौक वाज डन बाय नन अदर देन धर्मेंद्र जी एंड Zinat Aman, हु सेड वी कैन नेवर फॉरगेट व्हाट ही हैड डन फॉर अस। सो रिमेंबरिंग ओपी रालहन ऑन हिज 98th बर्थ एनिवर्सरी। सुनते रहिएगा उनके गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can fetch you up to 130.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Jemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najik na Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg sir 10.99.
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
6: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
11: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
12: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
14: आई हैव बीन से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
15: It's back and it's bigger.
16: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
15: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
16: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
15: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
17: You know how fans shout at football matches?
18: Oh, wake up!
17: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
19: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 a.m. DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Feel good track,
18: brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: of her stock loss.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: LenFi means quicker and safe way to send money.
3: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
2: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
3: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
4: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
1: This is LIKA Gold across Greater London.
5: ये बताना जरूरी था क्योंकि मैंने बाद में सोचा बंदे हाथ दैट वॉज नॉट कल्याण जी आनंद जी. पता नहीं क्यों मैंने कल्याण जी आनंद जी का नाम ले लिया था. आर डी बर्मन ने संगीत दिया था बंदे हाथ का और मजरू सुल्तानपुरी ने लिरिक्स लिखी थी. ये नेक्स्ट गाना जो है सुन लीजिएगा, वी आर रिमेम्बरिंग ओ पी रेलहन. सॉरी इफ आई मिसगाइडेड यू देयर.
6: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

तेरे नैना तलाश कर ले। फिल्म तलाश का 1969 का ये गाना इतना खूबसूरत गाना है। इट प्रोजेक्ट्स अ चीयरफुल ग्रैंड एंड होपफुल एटमॉस्फेयर एंड कैप्चर्स द फीलिंग ऑफ सर्चिंग फॉर अ लव्ड वन। तेरे नैना तलाश कर, और राग है छायानाथ। इट्स अ ब्यूटिफुल इवनिंग राग। इसका टाइम होता है लेट इवनिंग वाला राग, एंड जैसे कि 7 बजे से 10 बजे तक का राग। नेक्स्ट गाना जो है वो ऐसा एक गाना है जिसमें सैडनेस बहुत है, रफ़ी साहब ने गाया है, और वो है फिल्म पापी का।

0: अपने खून को गले लगाना, नहीं तेरी तकदीर में।
1: ये गाना जीवन के गहरे दुखों और इंसान की बेबसी को दिखाता है। जीनत अमान पे पिक्चराइज हुआ ये पूरा गाना, रफी साहब ने गाया। फिल्म पापी, ओपी रेल

0: music of N. Datta or lyricist Sahil Ludhianvi. वाह वाह वाह, ये गाना सुनकर ही मुझे साहिल लुधियानवी जी की जो आदतें थी वो सब मुझे याद आ रहा है. अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों ये बोल रहा हूँ. बिकॉज ही वॉज वेरी डिमांडिंग. एक तो क्या था कि वो म्यूजिक डायरेक्टर्स को कहते थे कि कोई ट्यून ऑलरेडी बनी हो उसके ऊपर मुझे लिखने को मत कहो, मेरी लिरिक्स जो है उसके ऊपर आप कंपोज करो. So you choose my lyrics, and once the lyrics are chosen, then you compose on top of it. Because tab aapko feel aayegi meri lyrics ki aur kya music aapko compose karna hai. That was his style. And matlab ego ki baat bolo, to Lata Mangeshkar ji ko jo payment mil rahi thi, unka demand tha ke mujhe exactly 1 rupee more than Lata Mangeshkar chahiye. That's it. And that triggered a major professional rift, no doubt about it. काफी लोगों के साथ अनबन हो जाती थी because of his artistic mood, I would say. Creative control जो होता था. And he fought for the rights of lyricists, successfully compelling all India radio to credit song lyricists on air. पहले गाने सुनाई देते थे All India Radio पे और सिंगर का नाम बोलते थे, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेते, लिरिसिस्ट का नाम कभी आता ही नहीं था. एंड ही फियर्सली फॉट टू गेट द राइट्स. सो आई रियली हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर साहिर लुधियानवी जी, फेमस फॉर हिज पोएटिक अथॉरिटी. ही इंसिस्टेड दैट लिरिक्स शुड टेक precedence over the musical tune. And not only that, he worked heavily with composers that respected that boundary of his. And S.D. Burman ke saath legendary early partnership for Gurudat films, Pyasa aur Bazi films. Phir Ravi, music director Ravi ke saath, it was most commercial and successful pairing. इन दोनों की जो थी, म्यूजिक डायरेक्टर रवि और साहिर लुधियानवी जी की फिल्म गुमराह देखो, म्यूजिक देखो, धूल का फूल, मीनिंग देखो, लिरिक्स देखो, और उसके ऊपर रवि जी ने उसके ऊपर संगीत डाला. रोशन जी ने भी डीपली सोलफुल कोलैबोरेशन जो बोलते ना, वो रोशन जी के साथ उनकी थी. मैग्निफिसेंट गजल्स एंड कवालीज, बरसात की रात, ताजमहल, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. फिर एन दत्ता और जयदेव जी दोनों के साथ दे हेल्प्ड साहिर लुधियानवी बाई गेटिंग हिम टू राइट शार्प सोशली कॉन्शियस पोएट्री फॉर देम. और फिर साधना, फिल्म साधना और हम दोनों, इन दोनों की फिल्मों में इन्होंने लिख के दिया. खयाम साहब की तो बात ही छोड़ो, देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात थी. कभी कभी और त्रिशूल जैसी फिल्मों में वो उन्होंने लिखा. लेकिन एक फिल्म थी, फिल्म फिर सुबह होगी. जब वो उस फिल्म पे काम कर रहे थे, ही रिजेक्टेड द असाइंड मेनस्ट्रीम कंपोजर. जिसको असाइन किया हुआ था उसको निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिक खयाम. वाई? बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग ऑन समवन हु डीपली अंडरस्टूड द सोर्स नॉवेल, क्राइम एंड पनिशमेंट जो नॉवेल थी जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी. फिर सुबह होगी, उस फिल्म का म्यूजिक और जो भी इन्होंने गाने लिखे उसके ऊपर, फिर सुबह होगी उसके अंदर जो मुकेश जी ने गाया, ओ हो, क्या लिखा इन्होंने, वो सुबह कभी तो आएगी. और राज कपूर जी उस फिल्म में थे. एंड ही वॉज सो इंसिस्टेंट अपॉन हु शुड राइट डू द म्यूजिक. एंड इन्होंने खयाम जी को डालकर ही रहे, बिकॉज उन्होंने कहा जो ये स्टोरी समझ नहीं सकता वो कैसे म्यूजिक देगा. एंड दैट वॉज साहिर लुधियानवी. आई बीन स्टोरिंग दिस फॉर द होल वीक बिकॉज आज फ्राइडे है. ही इज अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक एंड मेरा आखिरी दिन है फॉर द वीक. एंड इट विल कंटिन्यू सैटरडे एंड संडे. यू कीप लिसनिंग टू अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक साहिर लुधियानवी.
1: Like a Radio 90s. Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: Okay, what's going on around town? Of course, everybody knows Sunil Grover live, and we got Diwali Story and Atif Aslam and Raga San, our partnership with the premium hospitality brand. And Aftab Shiv Dasani, Jay's Entertainment, brings to you Bollywood legend live, Bollywood legends live in London with Aftab Shiv Dasani, singers Amantrika and Mayuri Patalia, Saturday 3rd of October at Harrow Arts Center. Tickets from box office, exclusive radio partner Leica Radio. And Kavita Krishnamurthy, jo mere saath 27 August ko live aayengi online on mere show pe, Gold Afternoons pe, on 27th of August, to talk about her show at the Royal Albert Hall. Kavita Krishnamurthy performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office, that is Royal Albert Hall box office, exclusive radio partner Leica Radio Network.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 piece se shuru aur Herdsman Butter Ghee 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
5: Kuch shaam ek calendar mein nahi, dil mein hamesha ke liye bas jati hai. Indian Idol fame Sugandha Date lekar aa rahi hai ek yaadgar musical evening live in concert. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Raga San.
11: जो करण अर्जुन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु.
6: Big Boss returns for its 20th season this September, only on Colors TV.
12: Big Boss, Big Boss, Big Boss. It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
13: Hey, boy!
14: Coast Guard, we're stuck.
15: OK, help's on its way.
14: Hold on, mate.
16: Shoes, tide, phone.
17: Back before dark, love. OK.
18: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
19: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worley Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box, and you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box, celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
2: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए, हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट महाराजा टूर्स डॉट को डॉट यूके और कॉल 07956154846।

0: Atif Aslam on your radio set. This one is Tera Hua. You are tuned into Like a Radio on 1450 AM. We are available on Dab, Alexa, Google Home and LikeAradio.com.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Like a Radio.
0: Well, at the moment, gold is trading at 108.87 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. This is Leica Radio across the Midlands.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 रुपीस से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: Kuch shaame calendar mein nahi, dil mein hamesha ke liye bas jaati hai. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. सैटरडे द 5th ऑफ सितंबर एट द प्लैटिनम सुइट लेस्टर. अपनी सीट्स आज ही रिजर्व कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मिस्टर बी ऑन

0: absolutely agree with the one and only Irshad Kamil. Beautiful lyrics from the song Aao Milo Chale. Film ka naam, of course, Jab We Met. And he's so right that, you know, I think just enjoy your journey and who cares where do we actually end up? Because I think when you have such music right, you know, with you, you're fine. You're absolutely fine.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, your £1 in British sterling can give you up to 130 rupees. Also, make sure that you exchange your pounds in SBI branches or maybe go online, or you can also go to SBI Yono mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
3: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
1: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
3: भोजपुरी बवाल.
7: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है.
8: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो.
9: कहां सही झगड़ा चलता भाई.
3: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी.
10: इट वाज जस्ट अनदर डे, अ फैमिलियर ड्राइव थ्रू फैमिलियर कंट्री. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
11: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
12: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: A Leica Radio Classic plays now.

0: Palak Muchhal on your radio sets from the film MS Dhoni, The Untold Story. Well, we know the story now and truly, truly miss Sushant Singh Rajput till date. Well, you are listening to Like a Radio on 1458 AM. We are available on Tab, Alexa, Google Home and LikeAradio.com.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Like a Radio.
0: Well, at the moment, gold is trading at 108.63 paisa per carat.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Like a radio. Yeah.
3: Like a radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
7: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.

0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
2: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा? Yeah.

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

0: Leica Radio.
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
3: डेजर्ट सफारी
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses.
0: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.